में तेरी वड़ियाई वर कौनानक सब तेरी वड़ियाई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बा।

रक्षनी मेर प्रयात रखना। स्वर्गवासी माता से इंद्रकार धर्म पत्नी स्वर्गवासी कल्याण सिंधी सलूजा समूह परिवार वल्लों सलाना बरसी दे नमत आप जी दे जूरी अखंड पाठ साहिब भेटा।

मनोकामना दी पूर्ति लई बेनती कर दे। सरदार परमजीत सिंह जी वीर जी दिल्ली निवासी आप जी दे हजूरी विच श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे अखंड पाठ भेटा 13001।

पक्षनी मेर प्रयास रखना आत्मक शांति नहीं। स्वर्गवासी गुरदीप कौर, स्वर्गवासी मनजीत सिंह जी।

मुरीदो सटियारे प्यारे सब थाई होए सहाय जिना नाम न प्या बन छकिया धर्म हित शीस देते सिखी सदक नहीं आ रहा तना गुरमुखा गुरु दे प्यारे सिंघा सिंघणिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा दी सावे बुलारे।

राग एक संग पंच भरंगन संग आलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरव करही पंच राग नी संग उच्च रही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन अस लेखी की।

जी गुरु गुरु निवास अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी पावन पवित्र स्थान तक सत्संग दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कृतन दे सत्ता जो संता वालों बिन तुम आया हाजर हो जिस खजाने विच माया हाजर कृति सो सुख जाने पर शुक्र करना नाम दान गुरु सिखी वाला जन्म स्थान देह अरुपता बख्शनी आसाम सत्संग प्रकरणी यात्रा सफल करनी।

जो कालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। एक ओंकार सदगुर प्रसाद उतार खासे दस कद का पात्र।

सर्व लोह जीदी सदा रक्षा हमने आगे लिखारी के दस्त का तो प्रसाद चौपई प्रणवो आदि कंकारा जलतन महियल की ओपसारा आत प्रगम गब अविनाशी लोक चतर ज्योत प्रकाशी हस कीट के बीच समाना राव रंग जह एक सर जाना अदब अलख पुरख अभिगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अक्षय अनभेखा राग रंग जह रूप न रेखा वरण चैन सब हूते न्यारा आद पुरख अदब अभिकारा बरन चैन जय जातना पाता सत्र मित्र जह तातना माता सबते दूर

पारा गंधर्व जाच रचे सुमचारा भूत भवेक भवान कहानी घट घट के पट पट की जानी तात्मा जह जात न पाता एक रंग का हूं नहीं राता सर्व जोत के बीच समाना सब हूं सर्व ठोर पहचाना काल रहत अनकाल स्वरूपा अलग पुरख अवगत अवधूता जात पात जय चेहना बरना अवगत दे अक्षय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दोकन को हरता एक चेत जय है एक छेन ध्यायो काल फांस के बीच ना आयो तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहू महादान हो के मांगे धन देत हो कहू महाराजन को दीजत अनंत दान कहू महाराजन ते छीन छेत लेत हो कहू बेदरीद कहू तास बेपरीद कहू त्रिगुण अतीत कहू सर्गुण समेत हो कहू जज गंधर्व उरक कहू विद्याधर कहू भय किन्नर पिशाच कहू प्रेत हो कहू होय के हिंदुआ गायत्री को गुप जपे हो कहू होय के तोर का पुकारे बांग देत हो कहू कोप काव होय के पुराण को पढ़त मत कतहू कुरान को निदान जान लेत हो कहू बेदरीद कहू तास बेपरीत कहू त्रिगुण अतीत कहू सरगुण समेत हो कहू देवतान के दीवान में विराजमान कहू दानवान को गुमान मत देत हो कहू इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहू इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कतहू बिचारा विचारत को विचारत हो कहू नेज नार पर नार के निकेत हो कहू बेदरीत कहू तास बेपरीत कहू त्रिगुण अतीत कहू सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्मधामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहू जटाधारी कहू कंटी धारे ब्रह्मचारी कहू जो साधी कहू साधना करत हो कहू कान फारे कहू डंडी होय पतारे कहू फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो का तुह सिपाही हो के सादत सिलाहन कहू छत्री हो के अरे मारत मारत हो कहू भूम भार को उतारत हो महाराज कहू भाव भूतन की भावना भरत हो कहू गीत नाद के निदान को बतावत हो कहू नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो का तुहू पयुग हो के पीवत पीवावत हो का तुहू मयुग ऊ कहू मद्यपान हो कहू माँ सूर हो के मारत मवासन कहू माँ देव देवतान के समान हो कहू महादीन कहू द्रव के अधीन कहू पिता में प्रवीण कहू भूम कहू भान हो कहू अकलंक कहू मारत मयंक कहू पूरण प्रजं कहू शोधता की सार हो कहू देव धर्म कहू साधना के हरम कहू कुतत कुकरम कहू धर्म के प्रकार हो कहू पावनहारी कहू विद्या के विचारी कहू जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहू नार हो कहू छत्रधारी कहू छालाधारे छैल भारी कहू छक्कवारी कहू छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाय कहूँ नृत्य के नचय कहूँ नर को आकार हो कहूँ बेदवानी कहूँ को की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजाय कहूँ धेन के तरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसान हो के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोषी निरंकार हो निर्जोर निरूप होके सुंदर स्वरूप होके भूपन के भूप होके दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिव्या रोग शोक के मिटैया की दोमानी महामान हो विद्या के विचारों के अदम अवतारों के शुद्धता की सूरतों की शुद्धता की शान हो जोवन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो
कहूं बेदरीत कहूं बेत्याखी परदीत कहूं नीता नीत कहूं ज्वाला सीता जगत हो पूरा ने प्रताप कहूं एकांति को जाप कहूं ताप को अताप कहूं जोग ते टिकत हो कहूं बार देत कहूं छाल सिंह छिनाए ले सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक सोत समूह सिद्धान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुराधन सोत सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग तुरंग से कुदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू भली बेद न्यावत शीश न जात बिचारे एते भय तो कहां भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कान के नहीं नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नयादम दाम सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पेख है पौन हा जति जधार सो विचार हजार सो विचार हजारक देख है पौन हार जति जधार सबे सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है सो दसुपा दुरंत वास सासना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंक हल्ले ना हलाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोर दे मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक चाचर एक सो एक दिवैया दानव देव फनि निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जीते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार ध्यान पापन के बहुपुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिर जाग सत्र सब अवलोक छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिप जौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान के जाति दाने स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्मेश्वर विषण सचिव पद अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैद बितायो साजे कहा सोने ले हो सब जन प्रेम की हो दिन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखे रवाची दिशा में काहू पछा को सी सिवायो को उपतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूपा पार अनछज तेज उदार अनभेद रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत्र निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड स
सब कीने जगत पसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई संत बिंद नगेंद्र कई माच काच फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विष्ण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई गोप गा भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कौ कतत हीसो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द पाव संन्यास कौ जोग भेद उदास कहु नीवली कर्म करंत कहु पौन हार दुरंत कहु तीरथ दान पार कहु जग कर्म उदार कहु अग्न होत्र अनूप कहु न्याय राज विभूत कहु शास्त्र सिमरत रीत कहु वेद स्यों विपरीत कई देह देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहु करत जल में जाप कहु सह तन परताप कहु बाद मनह करंत कहु ताप तनह सहंत कहु ग्रह द्रम अपार कहु राज जीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उच्चरंत बैरा कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सर्व धर्म नह पल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अधोख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि सपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृचस्तुहि पतस्तुहि क्षितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमितुहि जमातुहि मकितुहि मकातुहि अभूतुहि अभयतुहि अछूतुहि अक्षयतुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तुहि मतस्तुहि।

हुक मल हरि गजगद हबिबु धारि के दुआ मसान वास करोई करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदैव मोहन सदै मरत है। बिंद के सदैता हीज की बटैया देत बंदरा सदैव पाए नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवी ने ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी से छौना सब दूधाधारी पवन के हारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भसैया दन लोभ के तजैया दे तो गहुअन के जैया मृग भैया मानियत है। नब के उड़या दाए पंछी की बटैया दे बगला बिंडाल मृग ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी नाए ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के भसैया दाए भूसरी के जैया कहे नब के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भचैया दाए बांदरी के जैया कहे आदित फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आके भचैया सो चकोर समानी है। सूरज सिवैया दाए कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण का छमस तेंदुआ कह सब कौल लाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर और नया नाम कंस को बदय जम दूध कहियत है। मूड रूट पीटत ना गूढ़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धरी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या देह पे सहत है। निवलीकरम जल होम पावक पवन होम अदो मोय पाए ठांडे न बहते है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद वेदा कतेव नेत नेत के कहते है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपजते इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के बीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकनी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गय एक फिर भय राम चंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के ते अश्नि कुमार के ते अंसा अवतार के ते कालबद्ध भय है। पीरा पिकामर के ते गनेना परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा देत बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही बहुत दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते है। सिज दे करे अने तोपती कपड़ भेद पोस्ती अनेक दानी वावत है शीश का भयो मल जपे काटत अनेक दंड सोतन डंडा अष्टांग तीस का भयो रोगी जपे डारे रहे उर्दमुख बनते ना मुंडा रायो आदिश कामना अधीन सदा दामना फिर भी एक भावना भीन कैसे पावे जागे जीश का शीश पट कत जागे कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र होके सोग सा आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमया और दूसरो न भोग सौ का भयो भेड़ जो घसत सिर बिछन सौ माटी को बछैया बोल पूछ लीजा योग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेटे पर लोग सौ नाचोई करत मोर दादर कर शोर सदा घन घोर घन करे ओई करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूक श्रावक धरत है। पाहन अनेक जु एक ठौर वास करे कागौर चील दे देद बिचरत है। ज्ञान के भीन मा दान में न हुजलीन भावना किन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी को जो गया बैरागी मने कब हूँ सन्यास भेद भन कह दिखावई कौ पौन हरि कौ बैठे लाए तारी कौ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कौ ब्रह्मचारी कौ हाथ पे लगावे बारी कौ दंड धारी हो गए लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचत नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे भ्रम लोग पावई। पांच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचरा गदहा अनेकता पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी भी चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंगदार डार डार फांस ठग मार मार डार ही।
डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भिन्न कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पाइये अतापना तापना अनेक कन घायल सहते हैं जाप के किए थे जो पाइये अजाप देव पूजना सदी तू ही उचरत है नव के उड़े थे जो पे नारायण पाइये नलक पंछी डोल वो करत है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को योगी भयो को ब्रह्मचारी को जतियन मान बो हिंदू तुरक को राव जी माम सभी मानस की जा सब के पहचान बो करता करीम सोए राज करहिं ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान बो देहु रामसी सोई पूजावनी बाजोई मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष नैने के गाने के दे के बान खाक बात आता सो आपको रलाओ है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे आगते कनु का कोड उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूबजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपाजे सब ताही में समाहेंगे केते कछ मज केते उनको करत भच्छ केते अच्छे वच्छ होए सपच्छ ओढ़ जाएंगे केते नव बीज आज पाज को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यच हुए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल

के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर समय ताही में समाएंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत हैं। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासी की भ्रमाई फिरत है। करवा सहत केते भूमि में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखा भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के बिन जग जारी मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर बजा हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी साद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्ध दाबद्ध दाबृद रूपंग नहीं जान जाइ कछु रेखंग कहा बात ताको फिरे कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मै ना आवे ना रोगंग ना शोकंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेरे बेटे मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परेयंग पराप्रम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अक्षय विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग स नेहंग स नाते उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग भेकंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय आदत व्य अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदाप्सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अच्छे आद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अच्छे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृह कहूं देह दोखं कहूं खदि रोग के शोक शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जाच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रेष्ठ पन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेव बानी कहूं कोक की गाव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रण स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं
कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राजीतं कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देव वाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ छत्र धारं कहूँ ओम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छाल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजंग राजाधिकारी नमो नाथ पुरे सदा सिद्ध दाता अक्षय जी अक्षय आदत भय विधाता ना त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग अभूते तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यग तेजन भव प्रकाश अक्षय सुरुवत में अनासन तोट तेजन खुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूते रन छिजगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोलन भूत गरम दाता दयालन भूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भर नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योद पान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गे ने चैन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेग जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पित्र मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सात जय त्रासवाद नहीं देना जय आदंत नहीं रूपरास जय रोग शोक नहीं जोग जुगा जय त्रास नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्योला अंग अच्छा स्वरूप है भंग जय नेत ने उचरंत वेद जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय मित तेज अच्छा अतो जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलव योग साधन तुरंत तन सीत घाम पर खास हंत कई कलव एक आसन वितंत कई जतन योग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्ध बादेशन भ्रमंत कई उर्ध मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोप का कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच्छ नहीं तब दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद री जग आदि क्रम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाका रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नई नायक ताल पायत न पार कई तीरा तीरा धर्म सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नई तरफ ताल पायत न पार कहूँ राजीत कहूँ जोग धर्म कई सिमरे शास्त्र उचर सो करम निवली आदि करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मखो बखान कहूँ करत भ्रम विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितर कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरित उचार कही भजत एक पग

कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदव देष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चैत्य लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जंप हो जुगाण जूह जुवंग भय कंप हो मेरे पयाल भुवंग तप ताप सर्व जलेरु थलंग धन इचरत कुंद्र उमर बलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद थरु अभेद अभियंग अनखंड भूदा छेद छियंग अनकाल अपाल दियाल सुवंग जय ठटिय मेरा काल भुवंग अनखंड मंड प्रचंड रंग जय रचेंग देव अदेव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचेंग सरम कीन मका जय रागना रूपना रेख रुखंग जय तापना सापना सोग संग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय खेदना स्वेदना छेद छेंग जय जातना पातना मात पितांग जय रचेंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैगना दागना धोग गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दचार करी नौ खंड सचियो रस्ताम तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो श्री सिंदर बिंद नगेंद नगंग श्री जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतर उद भुजंग के देव देव सराज पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुजंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुवंग नान नपुंसक जाय किए गण किन्नर जय भुजंग दिए गज बाजरत अधिक पांच गणंग भव भूत भवि भवान तुवंग जय अंड से भूम अस्पताल जंग रंग पावर पवन प्रचंड बली बन जास की ओ फल फूल कली वो मेरा का निवास छितंग रज रोज का जा चंद्र मृतंग दो तो चंद दिनी सा दीप दई जय पावन पवन प्रचंड मई जय खंड खंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतर चार रचे नर गंधर्व देव अधेव सचे अन धूत भूत अछूत बदंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतर चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रुखंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदर देव देव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पारना पावत पूर्व मदंग अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सो सिंध अधोमुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नय नय कृपा निध पान प्र जय फोकर धर्म सब तज है चित कृपा निध को जप है तेउ या भव सागर कोतर है भाव भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बितान एक ओर वृत्ति वेद उचार सासुति जो वारस के चस्के रस है ते भूल ना काल फंदा फस है तो प्रसाद।

है समस्त सिद्ध वृद्धता सदयु सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदयु सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछेद तेज मानी है सदैव सिद्ध सिद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है दोकदा का दग है भूत भ्रम अभेक है न तात मात जात है न जापात चैन भरन है देगा सेगा भेग है सदयु विश्व भरन है विश्वम्बर में से नाते विषेक विश्व भरन है जिमी जमान के भी कह सदयु करम भरम है अतवैक है अभेक है अलेक ना जानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बसे आवई पुराण अकुरान नेद नेद कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है अगंज आदेव है कौध कैद पाई है जिमी जमान के भी कह समस्त एक ज्योत है न घाड़ है न भाड़ है न घाड़ बाढ़ होत है नहान है नबान है समान रूप जानी है मकीन अमकान अप्रमान तेज मानी है न देह है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोक है न दाग है न द्वेग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न दाग है न संग है न जाच है न गंद्र है न नर है न नार है न चोर है न छाव है न छाको कुमार है न नेह है न गे है न देव को बनाओ है न छल है न छत्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छत्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है काल खंड रूप है छेद है भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है गंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है खंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है ब्रह्मात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न वो है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैक है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदयु दयाल रूप है गंज है भंज है भरम है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न छित्र छेन बरन है व्यंत है अनंत तेज यानी भूम बीज है सदा छेद तेज मानी है न आद है न व्याद है गाद रूप लेखी है अदोक है अदाग है छह प्रताप एकी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है नंग है गंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोमो कार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी न राधपी करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा है बेंत बेंत बेंत को करंत पाट पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात पात्र मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है तो प्रसाद रुआमल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध वृग सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद वृग पार हाथ कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर विकरम योजे चक्र चैन न चित्र आदे उदार बुरत अगार नाद अनंत आदंत न जानी अभिखा देव तुरंत देव भयो न जाने जे मरम वेद कतेब सनक औसन केश नंदन पावई न हसेब जाच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही श्री सकर मुखचार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप आदेव अगाते अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे विराजे सूत्र भी व नाहे
गूढ़ गौण न भील फिकर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूम का स्वरूप जात जन्म ना काल कर्म ना धर्म कर्म भीन तीरा जात ना देव पूजा गौर के ना अधीन सर्व सपद बतार के तर जानी है जय ज्योत शेष नाम सहस फन नेद पूरन होत सो सोध हटा समय सुर विरोध दानो सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकवि गणत गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मेल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव जानो मूढ़ मानो जच न जाने जेब भूत भप भवान भूपद आद नाद नाथ अगन पाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे न ने सने अभे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व दे अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल भेक चक्र चेन न भरन जागो जात बात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लाय सर्व खाय सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रद पाल दीन बंदे आ स्वामी आदेव पाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चेन चक्र जागो चक्र चेन कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेखना भरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूको भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरो प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेक भगवान प्रमाण देव अगंज आद अंत नाथ श्रीपद परम पुरक अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिया जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल दयाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघाट अंडन दुष्ट खंडन कालू के काल दुष्ट हरण पुष्ट करण सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जा अमंड श्रेष्ठ चार विचार दे दे जानिए सब विचार आदे अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे सिर उदर मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मद जागो भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व अपार हार हार थके सबे नहीं पाइए तय पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके

को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कजी तब का मरण है कवन स्वर्ग नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन योग को भोग है कवन अपकर्म अपकर्म दोहरा कहो सो सम का शोक है दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ छेद प्रकाश दोहरा कहा नेम संयम कहा कहा ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार तो प्रसाद दीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दंडन असर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रते चतरासर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ करते अच्छा खंडे तेर चंडे खंड नंडे लखमते जय जय उसी में कासुर मर्दन रंप कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दोष निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदूषण महकमथे दानव प्रहार नरक निवार अधम उदारण उड़दाधे जय जय उसी में कासुर मर्दन रंप कपर्दन आदमृते डावरू डबंग बबर बबंग भुजा फरंग तेज बरंग लंकुणिया फादे आयन बांधे सैर विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके आसी झमके फुंग फरंग जय जय हो सीमय कासुर मर्दन रम कपर्दन दय जिड़ंग चंडासुर चंडन मुंड विमंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विबरखन ध्वज प्रकरण पुष्ट प्रहरकन दुष्ट मते जय जय हो सीमय कासुर मर्दन भूम का तल उर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रमाचन निर्दय नाचन धरमृते सुरोणद अचिंती अनल विनती जो जयंती खड़क धरे जय जय हो सीमय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे आगोग निवारण दोष प्रजानन श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलंग जय जय हुसी मय कासुर मदन भूम का ताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हरन धूम दुकारन द्रव मते दाढ़ी प्रदंते जो जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेदन अष्टभुजे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंघरु घमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाठ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाहे अगमता है एक मृते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आद कुमारा गाल मृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मते कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुनर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाय पताल कासन ले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तन तुंत बे दुख दोग दहंती जाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी में शास्त्र प्रकर खंड आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तोन तिरंगण तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उधारे दूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आदतंके क्रूर गते जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन भृतर विमोचन सोच विशोचन कौज गसे दामनी प्रहासे सुखसन्नासे सुमरे सुभासे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंट का विराजय रुणजन भाजय ब्रह्म भाजय सुन सुरंग को कल सुन लाजय कल्पिक जय सुखराज मधुर दुर्जन दल दझय मंथन रिझय सब न भजय रोह रण जय जय उसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्दन आदि उरंग चाचरी प्रजोजन दोष्ट विरोधन रोष अरोधन गुरुते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विजुंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मय कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद रंगी अगाद गते बिरड राज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदुरते सुर नर व्रत पारण पति धारण दुष्ट निवारण दो हरे जय जय हुसी मय कासुर मर्दन बेसो विदन श्रेष्ठ करे
दामनी प्रकाश से उन्तनासे ज्योत प्रकाश से अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष पधरखण बितल तले अष्टायत बाण बोली बाण संत बनाहर गुण गते जय जय होसी मय कासुर वर्धन आद अनाद गाद प्रते दुख दो प्रवचन सेवक रचन सत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाए दोष प्रदाय अर्दल गाहे दो घरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाणे सत जमाने आनंदे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन साध प्रदन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकन छत्र झमकन दामिन दमकन आदमृते डुगडुगी दमंक बाग बबंक भुजा फरंक शुद्ध कते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आज गाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते उधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते उधारे मुंड मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन धूम्र विदंस आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज विदंसन श्रोण चिन्सन शून्य पार निसोम मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादरी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिमखियो आप करते पसार जदब भूतन भय अनंत तो कहो जथा मत्रण तंत करता करीम का दर कृपाल अत भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोगर हत जय नेत ने सभेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जा अनंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पात्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलर सूरा से जा कराए प्रभ एक रूप द्वाय कह लखाए अनभेज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अनभय अनास सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान का मल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सा जय जात पार नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सारा छह स्वरूप अभिचल अपार जानी ना जाय जय रूप रेक बास तास है कौन भे कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरा सिद्धंग स्वरूप उद्दंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अनभेज तेज अनभेज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत नेत उच्छरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई करट रोध जुगे आदुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवये दीनन की प्रतिपाल कर नित संत उपार गनीमन कर पच पशु लग नानक नराधिप सर्व समय सबको प्रद पार पोकत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दयानीन दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है तुम दोखन को दल दुजन के पल में दल डार खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचार रोजी ही राज लोक राजक रोग रोहन की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भगवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब पुराण हसेब थके कर हाथ न आए
पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो केन श्री पद्म आपद पाए। आद अनंत अगाध अद्वेग सो भूत भविक भवान वह है, अंत विहीन अनात्म अदाग अधोगा छिद्र अच्छ है। लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है, दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापद ए है। कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय है, देव ही सने सबोतन ए ब्रग कैश है। जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है, काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापद ले है। रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते वह भांत बचावे, शत्रु अनेक चलावत खात तन एक ना लागन पावे। राख दया मनो कर दे कर पाप समू ना भेटन पावे, और की बात कहाँ का तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे। जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हे सब ही कर ध्यावे, भूम काल पताल रसा चल जज भुजंग समय सिर न्यावे। पाए सके नी पार प्रवाह को नेत ही नेत भेद बतावे, खोज सके सब ही कुजिया सुनहार परे हरात नावे। नारद से चतुरानंद से रूप नारी से सब हूँ मिल गायो, भेद कते बिना भेद लगे सब हार पर हाथ न आयो। पाए सके नी पार मापा से सना सनातन धायो, ध्यान धरो तह को मन में जय को मितो सब जग छायो। वेद पुराण कतेब गुना भेद निरपा समय पज हारे, भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत हैं अन छेद पुकारे। राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे, आदे अनादे अगाधे अभेग अद्भेग जपियो तिन ही कुल तारे। तीरथ गोट किए स्नान दिए वदान महाभ्रत हारे, देश किरो देश फिरियो कर भेद तपो धन के धरे ना मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टान धरे